0: वही तो है जिसने तुमको पैदा किया, फिर कोई तुम में काफिर है और कोई मोमिन, और जो कुछ तुम करते हो खुदा उसको देखता है।
1: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير।
0: उसी ने आसमानों और जमीन को मबनी बर हिकमत पैदा किया और उसी ने तुम्हारी सूरतें बनाई और सूरतें भी पाकीजा बनाई और उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है।
1: يعلم

0: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत, कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: शेयर्ड बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर, सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर, बड़े डिस्काउंट्स के लिए। जैस कैश है ना।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: हायर कन नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग, नो फ्रॉस्ट नो वरीज,
6: एंड स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का हाथ पा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।

0: It's 8:30 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
2: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL

0: IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल, नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान, मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत, कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: शेयर्ड बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर, सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।

HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।

0: एंड नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: This program is brought to you by
0: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving, No Frost, No Worries,
2: and
3: Sweepy Clean, करे तेजी से सख दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
4: Be ready for a great journey
5: with Melodious Companion.
6: Have a nice drive with FM 100.

0: control. No frost, no worries.
1: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत, कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी. अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL.

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
1: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
0: अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: सोशल मीडिया सार्फीन खसूसन नौजवान नस्ल के लिए इंटरनेट के मनफी पहलुओं की आगाही इंतहाई जरूरी है। तोहीन रसालत, इस्लाम और रियासत मुखालिफ, फौश मवाद और झूठी खबरें इंटरनेट पर डालना या शेयर करना काबिल सजा जुर्म है। लिहाजा हर किस्म के गैर कानूनी मवाद को इंटरनेट और सोशल मीडिया पर शेयर करने से गुरेज करें। ऐसे गैर कानूनी मवाद को हटाने के लिए PTA और ऐसे अपराध के खिलाफ कार्रवाई के लिए NCCIA से रुजू करें। ये मुफाद आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
3: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
4: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
5: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
7: किसने कहा था पैसे

0: सुन रहे हैं FM 100।
1: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
2: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
3: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।

0: फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
1: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
0: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: फायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर। इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: हाय फ्रेंड्स, आई एम विकास जुल्फिकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर बट एज समवन हू केयर्स अबाउट योर फ्यूचर। वी ऑल ड्रीम ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस बट ड्रग्स आर साइलेंटली डिस्ट्रॉइंग आवर ड्रीम्स, लाइव्स एंड आवर फैमिलीज। The anti-narcotics force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
2: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
3: This program is brought to you by
0: Hire Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
4: And
5: Sweepy Clean kare tezi se sakdaag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.

चेहरे बदलते रहे, जिंदगी वैसे ही चलती रही। दुनिया बदलती है फितरतन, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। पलती रही दिल में उदासी, अंधेरों से लेके रोशनी तक, खामियों से खामोशियों तक, होश से लेके मदहोशियों तक। अफसोस नहीं के अफसाने लिखे, वो अफसाने मबनी अफसुंदगी पर। खुदा तू देता है बेहिसाब, मेरे दर्द में थोड़ी तो कमी कर। खिले ना क्यों यहाँ अब गुलाब, क्यों रही बहार की कमी बस। किस्मत हमारे ही हाथ में है, उस पे इख्तियार की है कमी बस। वो लोग भी गुजर गए, वो घर भी जल चुके, वहाँ कुछ नहीं वहाँ से अब दर्द उठे। जख्म तो भरेंगे दोस्त, वक्त की मरहम में शिफा है, पर वक्त पे रहे मैं दोस्त, वो कब किसी के लिए रुका है। झुके ना सर फैले ना हाथ, हमारे अब बस यही दुआ है। कभी कभी आए सोच, जो हुआ वो ठीक ही हुआ है। सबर से सबक जो मिले हैं, सबर से अब मेरी सुलह है, कि कोई नहीं अगर तेरा तो मेरी जान।

एक मिनट रुकी, मेरा वेट कर। ओके देन जफी भाई टेक वन। कहा तो ना माफ कीजिएगा, शालीमार गार्डन में 5:30 बजे मेरा शूट के लिए हेयर एंड मेकअप, जल्दी मेरे शेड्स ला, लेकिन पहले चेक द पैरामीटर। गानों के बढ़ते डेसिबल, चेक पे बढ़ते डेसिबल, इट्स इनक्रेडिबल। मैं किस्मत झुकताई, कैसे किस्मत खुल आई, आई थिंक अबाउट दिस एट नाइट। Give a bash at the bad, the martial mad, the mirror instinct animalistic. Mad magician, yeah, mathematician, I never take second position, I'm getting ballistic. Cataclysmic, billabulously, dekho meticulously, thus mere medicinal se, love kiya maine kalam se, sach bola maine kasam se, rang dekho kaise badalte, dikhte hain sabke, karte kab se, baatein pakki, baatein kacche, I've had enough of it, but I keep going, got no option but to keep flowing, keep the toxic out of my zone, tuck in the sleeve of me off of

0: SBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: किसने कहा था पैसे बचा?

0: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
0: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. Account khole digitally. Ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
2: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
1: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
3: सिवाज स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं. हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा. अब आप डॉक्टर जलील को YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और रابطہ करें 0300-555-0011 पर.
4: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत.
5: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं.
4: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता.
6: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ.
5: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं. सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या.
4: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं.
6: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी.
5: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते.
6: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए
4: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
5: और इस वजन की असल हकीकत को समझिए.
4: आइए वेट से आगे का सोचें.
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
8: आम चीजों पर समझौता क्यों करें. शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.

0: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: This program is brought to you by
3: Hyrecan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries
4: FM 100
5: Assalamu Alaikum Pakistan
1: Azan Zohar पेश की जा रही है Sufi Soap Special Quality के तावन से
6: Bismillahirrahmanirrahim FM 100 के सब सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में नमाज़े ज़ुहर का वक्त हो गया है।

0: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।

0: Lahore, get ready to go mango crazy. Join us at Emporium Mall's Mango Festival from 3rd July till 3rd August 2026. Where every rupees 40,000 you spend on shopping, dining or entertainment rewards you with an exclusive high tea buffet at Nishat Hotel, Johartown. And when you spend rupees 75,000 or more, enjoy a complimentary dinner buffet experience. Because at Emporium Mall, every moment is designed to delight.
1: Behtareen insurance har waqt aapke saath. Jaise Easy Paisa Insurance Marketplace. 50 se zyada plans, behtareen coverage, khas discounts. Aur sirf 24 ghanton mein claim hasil karne ki sahulat. Cover 3 ke liye dedicated plans. Aur 25,000 top doctors se consultation bhi. Abhi Easy Paisa app par insurance marketplace explore kare. Easy Paisa Digital Bank. Easy wala bank.
2: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
3: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
4: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे न लगाए।
5: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
4: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
5: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी। अपना BMI चेक करवाइए,
3: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें। वेट से आगे का सोचें।
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: विवाद स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। अब आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और राब्ता करें 0300-555-0011 पर।
8: This program is brought to you by
9: Hire Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। No Frost, No Worries।

0: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
1: This program is brought to you by
2: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.

0: Lahore. Get ready to go mango crazy. Join us at Emporium Mall's Mango Festival from 3rd July till 3rd August 2026. Where every rupees 40,000 you spend on shopping, dining or entertainment rewards you with an exclusive high tea buffet at Nishat Hotel, Jorhatown. And when you spend rupees 75,000 or more, enjoy a complimentary dinner buffet experience. Because at Emporium Mall, every moment is designed to delight.
1: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत, कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।

महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।

0: Johor! Get ready to go mango crazy! Join us at Emporium Mall's Mango Festival from 3rd July till 3rd August 2026. Where every rupees 40,000 you spend on shopping, dining or entertainment rewards you with an exclusive high tea buffet at Nishat Hotel, Jorhatown. And when you spend rupees 75,000 or more, enjoy a complimentary dinner buffet experience. Because at Emporium Mall, every moment is designed to delight.
1: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां खार वहां HBL।
2: नाजरीन ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
3: बंद करो ना ढक्कन।
4: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉप सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉप सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।

0: / New Country. This is Country. Come on, sweet thing.
1: 100.
2: And get all you want.
3: HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
4: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
3: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
5: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत. कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी. अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
4: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
3: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
6: किसने कहा था पैसे बचा?

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
1: This program is brought to you by
2: Sweepy Clean। करे तेजी से सख दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
3: एक्सक्यूज मी, ए जड़ा गाना हैगा ए मेरी अपनी जबान च, तुहानू समझ ना आवे ते कोई गल नहीं, नो प्रॉब्लम।

0: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
2: बंद करो ना ढक्कन।
3: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
5: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
0: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
6: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
7: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
8: 100 on the FM dial. You're locked on to the number one sound. FM 100.

0: Have a nice drive with FM 100.
1: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
2: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां खास वहाँ HBL
4: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस 50 से ज्यादा प्लान्स बेहतरीन कवरेज खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
5: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना

HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL। HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल, नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: स्वीपी क्लीन, करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
4: Fm 100 Mega Music Power.

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: इरशादे बारी ताला है, तुम्हारा परवरदिगार तो अल्लाह ही है जिसने आसमान और जमीन 6 दिन में बनाए, फिर अर्श पर जलवा फरोज हुआ। वही हर एक काम का इंतजाम करता है, कोई उसके पास उसकी इजाजत हासिल किए बगैर किसी की सिफारिश नहीं कर सकता। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, तो उसी की इबादत करो, भला तुम गौर क्यों नहीं करते। सूरह यूनुस।
2: एथे अम्बला दे होने नबेड़े किसे नहीं तेरी जात पुछनी।

0: It's 6:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां खा वहां HBL

0: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत, कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए। जैस कैश है ना।
3: किसने कहा

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खार वहां HBL।
1: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर। इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
2: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फिकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर बट एज समवन हु केयर्स अबाउट योर फ्यूचर। वी ऑल ड्रीम ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस बट ड्रग्स आर साइलेंटली डिस्ट्रॉइंग आवर ड्रीम्स, लाइव्स एंड आवर फैमिलीज। द एंटी नारकोटिक्स फोर्स, द ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
3: ye paigham hukumat e pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
4: This program is brought to you by
5: Sweep Clean. Kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
6: It's 100 Pakistan.
7: I love it.

0: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
1: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
2: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
1: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
4: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: खालिस अज्जा, भरोसे मंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई है, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
7: इट्स 24 आवर्स नॉन स्टॉप वाइब्रेशन, connecting you,
8: connecting,
7: holding you,
8: holding,
7: with FM 100.
9: FM 100. FM 100.

0: It's 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां खा वहां HBL

0: कि IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल, नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है, लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा, ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस फाल करने के लिए दर्ज जेल कोड्स डायल करें। जैज सार्फिन के लिए *275#, जोंग सार्फिन के लिए *4004#, यूफोन सार्फिन के लिए *6611# और टेलीनोर सार्फिन के लिए *342#। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए।
4: ये मुफाद आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
5: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिसपन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
6: नोबडी कंट्रोल्स मी, आई एम अनकंट्रोलेबल। द ओनली थिंग दैट कैन कंट्रोल मी is music FM 100.

0: एक्सपायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर। इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: शेयर्ड बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
4: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
5: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
4: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
6: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
5: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
4: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
6: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
5: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
6: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
4: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
5: और इस वजन की असल हकीकत को समझें।
4: आइए वेट से आगे का सोचें।
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
9: सिवाज स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। अब आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और रابطہ करें 0300 555-0011 पर।

0: It's 7:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां खा वहां HBL

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
1: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: शेयर्ड बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
3: किसने कहा था पैसे बचे?

0: Feel the sound. Feel the breeze.
1: Feel the breeze.
0: FM 100.
1: FM 100.
2: This program was brought to you by Dil ke Itminan ke Saath. Islamic banking hai sab ke liye.
3: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।

0: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
1: This program is brought to you by
2: Hyrecan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.

0: It's 8:30 PM. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: Shared bundles, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
2: Lahore, get ready to go mango crazy. Join us at Emporium Mall's Mango Festival from 3rd July till 3rd August 2026. Where every rupees 40,000 you spend on shopping, dining or entertainment rewards you with an exclusive high tea buffet at Nishat Hotel, Jorhatown. And when you spend rupees 75,000 or more, enjoy a complimentary dinner buffet experience. Because at Emporium Mall, every moment is designed to delight.
3: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैस कैश है ना.
4: सिवाज स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं. हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा. अब आप डॉक्टर जलील को YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और रब्ता करें 0300 555 0011 पर.
0: This program is brought to you by
5: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
6: Enjoy your favorite music uninterrupted.
7: Uninterrupted.
8: Enjoy your favorite music uninterrupted.
6: You're listening FM 100.

0: Podcast-Killer. FFM 100.
1: This is FM 100.
2: Around the world.
3: आप सुन रहे हैं FM 100, आपका अपना रेडियो स्टेशन.
4: FM 100.
3: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
5: अजान इशा पेश की जा रही है सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी के तावन से.
6: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. FM 100 के सब सुनने वालों को अस्सलाम अलैकुम. लाहौर और उसके मजाफात में नमाज इशा का वक्त हो गया है.

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: FM 100।
2: इरशादे बारी ताला है, और जब हिसाब किताब का काम फैसल हो चुकेगा तो शैतान कहेगा, जो वादा अल्लाह ने तुमसे किया था वो तो सच्चा था, और जो वादा मैंने तुमसे किया था वो झूठा था, और मेरा तुम पर किसी तरह का जोर नहीं था। हाँ, मैंने तुमको गुमराही और बातिल की तरफ बुलाया तो तुमने जल्दी से और बेदलील मेरा कहा मान लिया। तो आज मुझे मलामत ना करो, अपने आप ही को मलामत करो। ना मैं तुम्हारी फरियाद रसी कर सकता हूँ और ना तुम मेरी फरियाद रसी कर सकते हो। मैं इस बात से इनकार करता हूँ कि तुम पहले मुझे शरीक बनाते थे। बेशक जो जालिम है उनके लिए दर्द देने वाला अजाब है। सूरह इब्राहिम

0: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
1: This program is brought to you by
2: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले maximum cooling और energy saving. No frost, no worries.
3: This is your music.

0: sound as was wanted. Wanted.
1: FM 100.
2: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
3: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर, सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।

क्या उन्होंने अपने सरों पर उड़ते जानवरों को नहीं देखा जो परों को फैलाए रहते हैं और उनको सुकेड़ भी लेते हैं? खुदा के सिवा उन्हें कोई थाम नहीं सकता, बेशक वो हर चीज को देख रहा है।